पर एक है बहुविध सृष्टि उपाई हुक्मे कार कराएं दा दूजा किस कहिए पाई।

जात। एक ओंकार सतगुर प्रसाद पार ब्रह्म प्रभ सिमरिय प्यारे दर्शन को बल जाओ जिस सिमरत दुख भी

ते कबहु न हार है हर हर गुण सार है तिन जम नेड़ न आवे जमन मरण तिना का चूका जो हर लागे पावे गुरमत हर रस हर फल पाया हर हर

हरि राम शब्द तपत बुझाई अंतर शांत आई सहज हर रस चाखिया मिल प्रीतम अपने सदा रंग माने सच्चा शब्द सुपाखिया पढ़ पढ़।

मिल सतगुर मल लह जाए जियो, जोग द्वा पर आया भरम परमहाया, हर गोपी कान उपाय जियो।

अमृत शक शके गुर तुठे हर पाया चूके तक तके हर जन हर हर होया नानक हर इके आसा महला चौथा हर अमृत भगत।

शिंगार हबरस अर्पिय जह दुख सुनिए जम पंथ भणिए तह साध संग ना डरपिय कर कीरत गोविंद गुणिए सगल पराशत दुख।

गुर ज्ञान अंजन प्रव निरंजन जल थल महियल पूरिया एक निमख जा कै हृदय वसिया मिटे तिसहै विसूरिया अगाध बोध

वे पापी सदा फिरहै अपराधी, मुखो अपर सकह अवहै, सदा सदा फिरहै अभिमानी, सगल कुटुंब डुबावहै।

भिष्ट छोड़ कर दोजक स्यो मन माना आसा। गगन नगर एक बूंद ना बरखे, नाद कहां जो समाना, पार ब्रह्म परमेश्वर मा।

माया चित्र विचित्र विमोहित बिरला बुझै कोई। सब गोविंद है सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। सूत एक मन सत संस जैसे, ओत पोत प्रभ सोई रहा।

वट पहागे जिन हर हर नाम अधारे हर हर अमृत हर रस पावे गुरमत भगत भंडारे जिन दर्शन सतगुर सत

मन कौ ए उपदेश दृढ़ हवै सहज सहज गुण गाई साजन ऐसो संत सहाई जिस पेट टूटह माया बंध बिसर न कब हूं जाई राव करत कर

जप मन नाम हर शरणी संसार सागर तार तारण रम नाम कर करणी रहाओ। ए मन मृत शुभ चिंतन गुर शब्द हर रमन मत तत ज्ञान कल्याण निधन हर नाम मन रमन चल चित वित भ्रमा भ्रम जग मोह मगन हितं थिर नाम भगत दिड़ं मती गुरवाक शब्द।

हेत व्याप्तं दुख अधिक जन्म मरणं पज शरण सतगुर उबर है हर नाम रिज रमणं गुरमत निहचल मन मन मनं सहज विचारं गुरमत निहचल मन मन मनं सहज विचारं सो मन निर्मल जित साच अंतर ज्ञान रतन सारं पै पाए भगत।

कह फूल है आनंद बिखै सोग, कब हसनो कब रोइए, कब हूँ मैल भरे अभिमानी, कब साधु संग तोइए, कोय न मेटे प्रभु का किया, दूसर नाही अलोइए, कहो नान।

गुरमुख सच्चै पावंदे दर सच्चै सचियार साजन मन आनंद है गुर का शब्द विचार अंतर शब्द बसार।

आपे सब कट भोग वै स्वामी, आपे ही सब अंजन, आप विवेक आप सब बेता, आपे गुरमुख भंजन।

मजलस तृष्णा तात मनसा कटोरी कूड़ परी पी लाए जमकाल। इत मद पीतै नानका बहुते खटिय है बेकार।

गुरमुख अंतर सखाई प्रभ होए, गुरमुख जिसनो आप करे सो होए, गुरमुख आप वडाई देवै सोए, गुरमुख शब्द

चलिए जो हर प्रभु का मैं देश नेहा तिस मन तन अपना देवा नित पखा फेरी सेव कमावा तिस आगे पानी ढोवा नित नित सेव करी हर जन की जो हर हर कथा

सदा सुख बस है, सदा सच रत्ता मन निर्मल आवन जान रहाए। दूजे पाए परम विभूति।

बाहर वस्त न पाल, जो पहावै सो पुंच तू गुरमुख नदर निहाल। गुरमुख नदर निहाल मन मेरे, अंतर हर नाम सखाई। मन मुख अंधले ज्ञान विहूण, दूजै पाए खुआई।

राम। हर हर सतगुर करहे भक्ति, जा हर प्रभ कृपा तारे। मैं गुर बिन अवर ना कोई बेली, गुर सतगुर प्राण हमारे। कहो नानक गुर नाम दृढ़ाया, हर हर

वडहंस महल्ला पंजवा प्रभ करण कारण समरथा राम रथ जगत सगल देहथा राम समरथ शरणा जोग स्वामी कृपा निध सुखदाता हों कुर्बानी दास तेरे जिन्नी एक पछाता।

पयाण ज्योतिष पावे सम्रथ सोचिए हिलड़ा हो संसारो जल थल महियल रव रहया साचड़ा सिरजन हारो साचा सिरजन हारो अलख।

दिन रस भोग सात अन महल समाणी जिन प्रयो जाता कर्म विधाता बोले अमृत बाणी गुणवंतिया गुण सार है अपने कंत संभाल है।

नानक गुरमुख सदा सुख पावहै अन दिन हर बैरागी पौड़ी से गुर सिख तन तन है जिन्नी गुर उपदेश सुनया हर कन्नी गुर सतगुर नाम।

तिन कौ जो गुरमुख सिखा जो हर नाम ध्याए दे तिन दर्शन पिखा सुन कीर्तन हर गुण रवा हर जस मन लिखा हर नाम सलाही रंग स्यो सब

भया भिखारी अच्छत राज बिशरत दुख पाया सोगत पई हमारी राज पोयंग प्रसंग जैसे है अब कश मर्म।

जपहो हर जपना हर संत चला हर नाले जिन हर जपया से हर होए हर मिलिया केल के लाली हर हर जपन।

मंगल सुख सुधारे तनासरी महला पंजवां कर अठवां दो पदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद सिमरौ सिमर सिमर सुख पावौ सास सास संभाले ए लोक परलोक संग

जुग में धर्मा जन कौ नाम बडाई सोभ नामो गत नामो पत जन की माने जो जो होग रहाऊ।

रहाव। बिन गुर मूढ़ पए है मन मुख, ते मोह माया नित फाथा। तिन साधु चरण न सेवे कबहू, तिन सब जन्म अकाथा। जिन साधु चरण साध पद सेवे, तिन सफलो जन्म सनाथा।

हर हर भगत दृढ़ावहो, हर हर नाम उमाहाराम, हर हर नाम दयाल त्याहा, हर कै रंग सदा गुण गाहा, हर हर हर

परमेश्वर है, आदि पूर्ण मध्य पूर्ण अंत पूर्ण परमेश्वर है। सिमरंत संत सर्वत्र रमणं, नानक अगनासन जगदीश्वर है।

पौड़ी। हर एक निरंजन गाय है सब अंतर सोई, करण कारण समरथ प्रभ जो करे सो होई। खिन मह थाप उथाप दा तिस बिन नहीं कोई, खंड ब्रह्मांड पाताल दीप रव्या सब लोई। जिस आप बुझाए सो बुझसी निर्मल जन सोई। सलोक रचंत जी रचना मात गर्भ अस्थापनं सा

बिखम थान हुंजिन रखिया तिस तिल ना विसार। प्रभ बिसरत सुख कदे नाहे जा सह जन्म हार। श्लोक।

सुत बनता साजन सेवक दिए प्रभ देवन जोग हर सिमरत तन मन हरिया लह जाहे विजोग साध संग हर गुण रमहु बिनसे सब रोग सलोक कुटंब जतन करण माया अनेक उदमह।

है सर्व दोख निवारण है। शरण सूर भगवान है जपंत नानक हर हर हरे।

तिन प्रभ आप बुलायो रहाउ। हर कथा हर जस साध संगत सियो, एक मोहत ना एव मन लायो। बिगसियो पेख रंग कुसुंब को, पर ग्रह जोहन जायो। चरण कमल सियो पाओ ना कीनो, नह सतपुरख मनायो। तावत कौ ताव है बहु भांति, ज्यों तेली बलद परमायो। नाम दान

मन मिल संत जना जस गायो, मन मिल संत जना जस गायो, हर हर रत्न रत्न हर नीको, गुर सत गुर दान दिवायो रहाओ। तिस जन कौ मन तन सब देवो, जिन हर हर नाम सुनायो, तन माया संपै तिस देवो, जिन हर मीत मिला।

हर जन राम नाम गुण गावे, जे कोई निंद करे हर जन की, अपना गुण ना गवावे रहाओ।

सो तन गुरु शाबास है हर देश नेहा हो वेख वेख गुरु विकसिया गुर सत गुर देहा गुर रसना अमृत बोल दी हर नाम सुहावी जिन जिन सुन सिखा गुर मन्या तिना भुख सब जावी हर का मार्ग आखी है कहो कित बिद जाई है हर हर

मन मुख दज मरन जमपुर बधे मारी है वेला ना लहन गुरुमुख जन्म सकार था सच्चा शब्द लगन आत्म राम प्रगासया सहजे सुख रहन गुर का शब्द विस

सरोवर है वडभागी पुरख लहन। गुर सरवर मान सरोवर है वडभागी पुरख लहन। सेवक गुरमुख खोजया से हंसले नाम लहन। नाम ध्यान रंग स्यों गुरमुख नाम लगन। तुर पूरब होवै लिखया गुर भाणा मन लैन। वड़ पा

साज शब्द लिवलाई, आन दिन सहज रह रंग राता, राम नाम रिद पूजा। नानक गुरमुख एक पछाणे, अवर न जाने दूजा। सब

निस्तरया हर चरण त्याय सब फल पाए मिटे आवन जान पाए भगत सुभाए हर जप अपने प्रभ पावा जप एक अला

गाओ मंगलो नित हर जन हो पुन्नी इच्छ सबाई राम। रंग रते अपने स्वामी सेती मरै ना आवै जाई राम।

ध्यान कल मल दुख जारे प्रभु चितारे मन की दुर्मत नासी कहो नानक प्रभु कृपा की जय हर गुण सुनिय है अविनासी क्रोड़ हस्त तेरी टहल कमावे चरण

ले ज्यों हर पावै भगवाना। कहत नानक तू साचा साहिब कौन जाने तेरे काम। इकना कर्म है दे वड्याई इक भरम भवै अभिमाना।

तन तन हर साध जन सखिए नानक जिन्नी नाम ते आया जाए बस हो वड पागनी सखिए संता संग समाइए तह दुख ना भूख ना रोग ब्यापे चरण कमल लिव लाइए तह दुख ना भूख ना रोग ब्यापे चरण कमल लिव लाइए तह जन्म ना मरण ना आवन जाना।

साध संग इस मन है उदारों मत बुद्ध सुरत नाहीं चतुराई ता मिलिए जान ले मिलाई नैन संतोखे प्रभ दर्शन पाया कहो नानक सफल सो आया।

निस्बा सरमन अनदहोत चितवत किरपाल रहाउ। जगत उदाहरण साध प्रभ तिन लागहो पाल, मोकौ दीजै दान प्रभ संतन पगराल उकत सियान।

हूँ अवर काश सब प्रभ के हाथ, सर्व सुख नानक पाए संग संतन साथ। बिलावल महला पंजवां।

हाँ। करण कारण समरथ है तिस बिन नहीं होर, नानक प्रभ शरणागति साचा मन जोर। बिलावल महला पंजवा सिमर।

दृष्ट दृष्टाय अब महान खोए खोए खोई हों मोको सतगुर मंत्र दृढ़ाए अब महान खोए खोए खोई हों मोको सतगुर मंत्र दृढ़ाए अब महान खोए खोए खोए खोई हों मोको सतगुर मंत्र दृढ़ाए अतुल अतुल अतुल नह तुलिया।

पूर्ण पूर्ण रहो संपूर्ण शीतल शांत दयाल दई काम क्रोध तृष्णा अहंकारा तनते होए सगल खई।

संग हर बुहिया जब जगन्नाथ जगदीश पुछैया शरण परे से जन उबरे ज्यों प्रहलाद उदार समैया रहा पार अठारह मह चंदन ऊतम चंदन।

रख रख चरण हर ताल पूरैया, हर कै रंग रत्ता मन गावै, रस रसाल रस शब्द रवैया, निज कर धार चोवै।

आए गुरमुख जन्म सफल है जिसनो आपे लय मिलाए नानक नदरी नदर करे ता नाम धन पल्लै पाए पौड़ी।

रे मन हर पज भ्रम तजहो जग जीवन राम रहाओ। आवत कछु ना दिसई नह दिसै जात जह उपजै बिन

तिन अंत छड़ाए जिन हर प्रीत चितासा जन नानक अन दिन नाम जपहो हर संत हो यो छूटन का साचा परवासा गोंड महला चौथा हर सिमरत सदा हुए आनंद सुख अंतर शांत शीतल मन अपना।

में सगले कुल उधरे, नाम हमारे कार्य सीद, नाम संग मनुआ गीद, नामे ही हम निरपौ पहे, नामे आवन जावन रहे।